0: जवा ईमान जवा माय वचन गदा लिखवा
1: एंड व्हाट इज दैट
0: आई डिड टेक इंटरव्यू
2: यस
0: यस दैट इज अ ब्लेसिंग एंड दे सेड दोस डू नॉट हु डू नॉट एग्री विद अस दे कैन गो टू